0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए बने रहें। श्रोताओं, आज हम रेडियो हार्मनी की शुरुआत भगवान विष्णु के भजन से कर रहे हैं।

हे हरि हर लीजे। ये था एक विष्णु भजन जिसे गाया था शैलेंद्र भारती ने, बोल लिखे थे कामेश्वर शुक्ला ने और संगीत दिया था कश्यप वोरा ने। मित्रों, सितंबर के महीने में अब कुछ ही तिथियां बाकी रह गई हैं। आज 23 तारीख है वामन जयंती और आज ही ऑटम्नल इक्विनॉक्स पड़ता है। 25 को है गणेश विसर्जन। इंटरनेशनल डेज में 23 को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस है, 24 को वर्ल्ड मैरिटाइम डे और 26 का है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, 27 को है वर्ल्ड टूरिज्म डे, 28 का इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, 29 को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट और 30 तारीख को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। श्रोताओं, आज 23 सितंबर को हमें भारतीय फिल्म जगत की दो मशहूर हस्तियों को जन्मदिन की बधाई देते हुए खुशी हो रही है। ये हैं फिल्म अभिनेत्री तनुजा और गायक कुमार शानू। आइए संक्षेप में उनके करियर्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तनुजा से। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1941।

रात अकेली है बुझ गए दिए। ये था फिल्म ज्यूअल थीफ से एक गीत। जी फिल्म आई थी 1967 में। बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। गाया था आशा भोंसले ने। दोस्तों तनुजा मुखर्जी जिनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1943, जिन्हें सिर्फ तनुजा के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। मुखर्जी समर्थ परिवार से जुड़ी तनुजा अभिनेत्री शोभना समर्थ और प्रोड्यूसर कुमार सेन समर्थ की बेटी और अभिनेत्री नूतन की छोटी बहन हैं। उनकी शादी फिल्म मेकर शोमू मुखर्जी से हुई थी, जिनसे उनकी दो बेटियां हैं, अभिनेत्री काजोल और तनीषा। फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी तनुजा को मेम दीदी 1961, चांद और सूरज 1965, बहारें फिर भी आएंगी 1966, ज्वेल थीफ 1967, नई रोशनी 1967, जीने की राह 1969, हाथी मेरे साथी 1971, अनुभव 1971, मेरे जीवन साथी 1972, दो चोर 1972 जैसी हिंदी फिल्मों और देया नेया 1963, एंथनी फिरंगी 1967, तीन भुवनेर पारे 1969, प्रथम कदम फूल 1970, राजकुमारी 1970 जैसी बंगाली फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 1960 के दशक के आखिर और 1970 के दशक की शुरुआत में धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, उत्तम कुमार और संजीव कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय रही।

मेरा दिल जो मेरा होता, ये था फिल्म अनुभव से एक गीत। ये फिल्म आई थी 1971 में, गाया था गीता दत्त ने और इसके बोल लिखे थे गुलजार ने, संगीत दिया था कानू रॉय ने। तनुजा का जन्म 23 सितंबर 1943 को एक मराठी परिवार में फिल्म मेकर कुमार सेन समर्थ और अभिनेत्री शोभना समर्थ के घर हुआ था। उनकी तीन बहनें, जिनमें अभिनेत्री नूतन भी शामिल हैं, और एक भाई है। उनकी दादी रतनबाई और कजन नलिनी जयवंत भी अभिनेत्री थी। तनुजा के माता पिता उनके बचपन में ही आपसी सहमति से अलग हो गए थे और शोभना का नाम अभिनेता मोतीलाल के साथ जुड़ा। शोभना ने तनुजा और उनकी बड़ी बहन नूतन की डेब्यू फिल्में प्रोड्यूस की थी। उनकी दो अन्य बहनें हैं, चतुरा एक आर्टिस्ट है और रेशमा और उनके भाई जयदीप हैं। इनमें से किसी ने भी एक्टिंग नहीं की। तनुजा ने 1973 में फिल्म मेकर शोमू मुखर्जी से शादी की। इस कपल की दो बेटियां हैं, एक्ट्रेस काजोल और तनीषा। काजोल की शादी एक्टर अजय देवगन से हुई है। 10 अप्रैल 2008 को 64 साल की उम्र में हार्ट अटैक से शोमू का निधन हो गया। फिल्म मेकर जॉय देव और राम उनके देवर हैं। वह एक्टर मोहनीश बहल, रानी और शर्बानी और डायरेक्टर अयान मुखर्जी की आंटी हैं।

फिल्म दो चोर का ये गीत काली पलक तेरी गोरी गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पद्मनाभ ने। तनुजा को कई सारे अवार्ड और नॉमिनेशंस मिले हैं। 1964 में बेनजीर फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड मिला। 1968 में जेल थीफ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए। 1970 में पैसा या प्यार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1981 में फिल्म अदालत ओ एक्टिमेई के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट के लिए नॉमिनेट हुई। 2013 से 20 में लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स में मराठी फिल्म पितृऋण के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सन 2014 में दो थे अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल हुआ। तो दोस्तों, ये था फिल्म अभिनेत्री तनुजा के करियर पर एक संक्षिप्त नजर। आइए अब गायक कुमार सानू के करियर पर भी इसी तरह एक नजर डालें।

ये था फिल्म 1942 ए लव स्टोरी का एक गीत जिसे फिल्माया था अनिल कपूर और मनीषा कोइराला के ऊपर और गाया था कुमार सानू ने। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। कुमार सानू जिनके जन्म का समय का नाम केदारनाथ भट्टाचार्य था, इनका जन्म हुआ 20 अक्टूबर 1957। एक भारतीय प्लेबैक सिंगर हैं जिन्हें 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में हिंदी सिनेमा में पहचान मिली। वे अपनी सुरीली आवाज और बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी, बंगाली, नेपाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी और उड़िया जैसी कई भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। सोनू को आशिकी फिल्म के लिए 1990 की फिल्म थी, साउंड ट्रैक से बहुत ज्यादा पहचान मिली। इस फिल्म के लगभग सभी मेल सोलो गाने उन्होंने ही गाए थे और इसने उन्हें उस दौर के एक बड़े प्लेबैक सिंगर के तौर पर स्थापित किया। उन्होंने 1990 से 1995 तक लगातार 5 साल बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। ये अवार्ड उन्हें आशिकी फिल्म 1990, साजन 1991, दीवाना 1992, बाजीगर 1993 और 1942 ए लव स्टोरी 1994 में जो आई थी जैसी फिल्मों के लिए मिले। 1993 में सोनू ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। उनके कई गाने बीबीसी की ऑल टाइम टॉप 40 बॉलीवुड साउंडट्रैक की लिस्ट में शामिल किए गए। वे टेलीविजन म्यूजिक रियलिटी शो में मेंटोर और जज के तौर पर भी नजर आ चुके हैं। भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने सन 2009 में सोनू को पद्मश्री से सम्मानित किया। 1980 का दशक प्रारंभिक करियर, उसमें गायक जगजीत सिंह ने उन्हें सन 1989 में संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें मंच नाम कुमार सानू अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जादूगर फिल्म 1989 के साउंडट्रैक में योगदान दिया।

जाती हूं मैं, जल्दी है क्या। फिल्म थी करण अर्जुन और इसमें गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक। संगीत दिया था राजेश रोशन ने, बोल लिखे थे हिंदीवर ने। दोस्तों 1990 से 91 तक कुमार सानू को मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा में सफलता आशिकी फिल्म 1990 की उसके साउंड ट्रैक के साथ मिली। यह एल्बम अपने युग के सबसे सफल हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक में से एक बन गया और सोनू ने इसके गीतों का एक बड़ा हिस्सा प्रस्तुत किया। अब तेरे बिन नजर के सामने, तू मेरी जिंदगी है, बस एक सनम चाहिए और धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जैसे ट्रैक ने उनकी विशिष्ट रोमांटिक प्लेबैक शैली स्थापित की। उन्होंने 1991 में साजन, सड़क, दिल है के मानता नहीं, फूल और कांटे, साथी और जानी तेरी गली में सहित प्रमुख साउंड ट्रैक के साथ इस सफलता को समेकित किया। साजन विशेष रूप में से महत्वपूर्ण था। सोनू ने मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1991 के अंत तक वह हिंदी सिनेमा के अग्रणी पुरुष पार्श्व गायकों में से एक बन गए थे। वर्ष 1992 में सोनू की लोकप्रियता में बड़ा विस्तार हुआ। उनकी सबसे महत्वपूर्ण रिलीज में दीवाना, जान तेरे नाम, दिल का क्या कसूर, खिलाड़ी, जिगर, बोल राधा बोल, राजू बन गया जेंटलमैन और चमत्कार शामिल हैं। दीवाना का साउंडट्रैक विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। सोनू के गाने सोचेंगे तुम्हें प्यार, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार और तेरी इसी अदा पे सनम 1990 के दशक की शुरुआत में उनकी रोमांटिक शैली के स्थायी उदाहरण बन गए। 1993 में फिल्म बाजीगर हम हैं राही प्यार के फिर तेरी कहानी याद आई, रंग, अनाड़ी, दलाल, दामिनी, सैनिक और सर के जरिए उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। बाजीगर ओ बाजीगर, ये काली काली आंखें, घूंघट की आड़ से, तेरे दर पे सनम और तेरी मोहब्बत ने, जैसे गीतों ने दशक के सबसे प्रमुख रोमांटिक पार्श्व गायकों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया।

ये दिल आशिकाना फिल्म थी इसी नाम से, ये दिल आशिकाना, और गाने वाले थे कुमार सानू और अलका याग्निक, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और बोल लिखे थे समीर ने। दोस्तों, व्यावसायिक सफलता, प्रमुख साउंडट्रैक की संख्या और दीर्घकालिक लोकप्रियता के संयोजन के मामले में 1994 से 96 की अवधि आम तौर पर कुमार शानू के 1990 के करियर का सबसे मजबूत खंड है। 1994 में उनकी प्रमुख रिलीज में 1942 ए लव स्टोरी, हम आपके हैं कौन, मोहरा, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, ये दिल लगी, दिलवाले, राजा बाबू, विजय पथ, सुहाग और सलामी शामिल हैं। इनमें से 1942 ए लव स्टोरी, एक लड़की को देखा के कारण शानू की व्यक्तिगत विरासत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो उनके हस्ताक्षर रोमांटिक गीतों में से एक बन गया। इस बीच मोहरा और हम आपके हैं कौन दशक के दो सबसे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण साउंडट्रैक बन गए। 1995 को कुमार शानू के दशक का सबसे मजबूत वर्ष माना जा सकता है। उनकी प्रमुख रिलीज फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, बरसात, कुली नंबर एक, अकेले हम, अकेले तुम, क्रिमिनल, नाजायज और सबसे बड़ा खिलाड़ी शामिल हैं। इस वर्ष कई स्थायी रिकॉर्डिंग्स आई, जिनमें तुझे देखा तो हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, तू मिले दिल खिले और दिल कहता है शामिल हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दशक की सबसे प्रभावशाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई, जबकि बरसात और क्रिमिनल सोनू की अपनी संगीत सूची के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गई। 1996 में राजा हिंदुस्तानी, साजन चले ससुराल, जीत, खामोशी, फरेब, चाहत, दिल जले, पापा कहते हैं, तेरे मेरे सपने और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी रिलीज के साथ शानू इंडस्ट्री में शीर्ष पर रहे। राजा हिंदुस्तानी वर्ष का निर्णायक एल्बम बन गया, जबकि साजन चले ससुराल, जीत, खामोशी और फरेब ने शानू की आवाज की निरंतर मांग को प्रदर्शित किया। 1997 में कुमार शानू कई व्यावसायिक रूप से सफल साउंडट्रैक पर दिखाई देते रहे। उनकी प्रमुख रिलीज में परदेश, गुप्त, यस बॉस, हीरो नंबर एक, जुड़वा, इश्क, कोयला, विरासत, मिस्टर एंड मिसेस, खिलाड़ी और औजार शामिल हैं। परदेश का साउंडट्रैक दो दिल मिल रहे हैं के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जो दशक के उत्तरार्ध में शानू के सबसे स्थायी गीतों में से एक बन गया। हालांकि उनका दबदबा अब उतना जबरदस्त नहीं रहा जितना 1994-96 में था, फिर भी वे एक विशिष्ट स्तर के पार्श्व गायक बने रहे।

दो दिल मिल रहे हैं, ये था कुमार सानू की आवाज में ये गीत जो फिल्म परदेश से था। ये फिल्म 1997 में आई थी। इसके संगीतकार थे नदीम श्रवण और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। मित्रों, हमें उम्मीद है आज की हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। समय हमेशा दौड़ा चला जाता है, 8 बजने को हैं और मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी। अगले बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक रेडियो हारमोनी के साथ पीपल पावर रेडियो 2XX FM 98.3 पर मैं अरविंद गुप्ता फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम और शुभ रात्रि। और बने रहें, इसके बाद हमारा कार्यक्रम है लैटिनो अमेरिकन अहोरा, और मैं आपको छोड़े जा रहा हूं इस खूबसूरत गीत के साथ। ये है तू मिले दिल।